0: 90 ఏళ్ల ఆకాశవాణి చరిత్రకు మీ రచనా వ్యాసంతో కొత్త అధ్యాయానికి నాంది పలకండి. తెలుగులో అలతి పదాలతో నా ప్రియనేస్తం ఆకాశవాణి అనే అంశంపై వ్యాసరచన పోటీ నిర్వహిస్తోంది. ప్రతి చరిత్ర ఒక అక్షరంతోనే మొదలవుతుంది. ఆ అక్షరం మీదే ఎందుకు అవ్వకూడదు? నా ప్రియనేస్తం ఆకాశవాణి అనే అంశంపై వ్యాసరచన పోటీల్లో పాల్గొనదలచిన వారు 30 సంవత్సరాల లోపు వారై ఉండాలి. మే 6వ తేదీ బుధవారం ఆకాశవాణి విజయవాడ కేంద్రంలో ఉదయం 10 గంటలకు వ్యాసరచన పోటీ నిర్వహించబడుతుంది. మీ కళాన్ని కదిలించి మీ గళాన్ని 1DRJగా ఆకాశవాణి విజయవాడ కేంద్రంలో వినిపించేటువంటి సువర్ణ అవకాశాన్ని అందిస్తోంది. అంతేకాదు, గెలుపొందినటువంటి విజేతలకు బహుమతులు కూడా అందజేయబడతాయి.
1: ఉదయరేఖల కార్యక్రమం ఇంతటితో సమాప్తం. ఆకాశవాణి మీరు వింటున్నారు FM 102.2. సమయం 8 గంటలకు వస్తుంది. వార్తా ప్రసారాలు ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి రిలే.
2: క్షణాల్లో ముందుగా హిందీలోను అనంతరం ఆంగ్లంలో వార్తలు వింటారు. ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి రిలే.
3: ఆకాశవాణి సే సమాచార్ ప్రభాత్ కే సాత్ మై ముఖేష్ కుమార్. असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी विधानसभा चुनावों की मतगणना शुरू. 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की भी मतगणना जारी. भारत ने लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति खारिज करते हुए इसे अनुचित बताया. मौसम विभाग ने हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित उत्तर भारत में आज गरज चमक के साथ वर्षा और ओले पड़ने का अनुमान जताया. अमरीका होर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा. और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हराया. असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों की मतगणना शुरू हो गई है. सबसे पहले डाक मतपत्र की गिनती की जाएगी. शुरुआती रुझान दोपहर तक मिलने का अनुमान है. पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में सभी मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं.
4: कुछ घंटों में पश्चिम बंगाल की राजनीतिक किस्मत तय होगी. 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मतगणना सुबह 8 बजे राज्य भर में कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई. 293 निर्वाचन क्षेत्रों के परिणाम दिन भर आने की उम्मीद है, जबकि फलता निर्वाचन क्षेत्र में इस महीने बाद में पुनः मतदान होगा. राज्य भर की 77 मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. स्ट्रांग रूम और मतगणना हॉल में CCTV निगरानी और बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है. चुनाव अभियान और रिकॉर्ड मतदाता भागीदारी के बाद अब सबकी निगाहें आज के फैसले पर है. संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता.
3: तमिलनाडु में मतगणना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए चलते हैं चेन्नई में हमारे संवाददाता सुशील तिवारी के पास. सुशील, मतगणना के बीच राज्य में सुरक्षा के क्या प्रबंध किए गए हैं?
5: देखिए मुकेश, सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम है. 3 स्तरीय जो सुरक्षा व्यवस्था होती है वो पूरी तरह से चाक चौबंद है. बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है और रूट को डाइवर्ट किया गया है. लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि तमिलनाडु जो है वो राजनीतिक रूप से बड़ा सक्रिय जो है प्रदेश है, तो बड़ी संख्या में जो राजनीतिक कार्यकर्ता है वो भी जो बाहरी दायरा है उसके आसपास खड़े नजर आ रहे हैं. उनकी उत्कंठा है, उनकी इच्छा है कि वो जल्दी से जल्दी जान सकें कि उनके राजनीतिक नेता, उनके नेताओं का क्या भविष्य हो रहा है. तो बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचने लगे हैं. हम अभी थोड़ी देर पहले जो है चेन्नई में जो 3, वैसे तो पूरे राज्य में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन चेन्नई में 3 मतगणना केंद्र हैं, लॉयला कॉलेज, अन्ना यूनिवर्सिटी और क्वीन मैरीज कॉलेज. तो हम क्वीन मैरीज कॉलेज के पास थे, वहां जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम थे. लेकिन ये मरीना बीच के पास है, बड़ी संख्या में राजनीतिक कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंच चुके हैं और लोगों में जबरदस्त उत्कंठा है.
3: जी सुशील, ये भी बताइए कि आज जो मतगणना हो रही है उसमें किन किन प्रमुख उम्मीदवारों की साख दांव पर है?
5: देखिए मुकेश, अगर हम बात करें तो डीएमके का जो सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस है एसपीए, उसके जो नेता है वो एमके स्टालिन, जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री भी, निवर्तमान मुख्यमंत्री जिन्हें कहा जाए, वो कोलाथुर सीट जो कि चेन्नई में ही है वहां से लड़ रहे हैं। तो उनके चुनाव परिणाम पर सबकी निगाहें होंगी। जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं ई पलानीसामी, वो इडापड्डी जो है सेलम डिस्ट्रिक्ट में है, सेलम जिले में है, वहां से लड़ रहे हैं। और केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन जो है वो अविनाशी सीट से लड़ रहे हैं, जो कि तिरुपुर में है। इसके अलावा अगर अन्य प्रमुख उम्मीदवारों की बात करें जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वो जोसेफ विजय जो है टीवीके पार्टी के, उनकी टीवीके पार्टी का उनका तमिल वेत्र कड़गम जो पार्टी है, उनके नेता दो सीटों से लड़ रहे हैं, पेरम्बूर जो कि चेन्नई डिस्ट्रिक्ट में ही है और त्रिची जिले की त्रिची ईस्ट, त्रिची पूर्व की जो सीट है वहां से वो दो जगह से लड़ रहे हैं। जो डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री है उदयनिधि स्टालिन, वो चेपक सीट से लड़ रहे हैं। और एक अन्य महत्वपूर्ण नाम डॉक्टर तमिल ईसाई सौंदर राजन का है, जो कि मैलापुर जो चेन्नई की ही सीट है, ये वर्तमान ये पूर्व में तेलंगाना और पुडुचेरी की राज्यपाल रह चुकी हैं। तो वो भाजपा नेता है, वो इस बार चुनाव लड़ रही है मैलापुर जो चेन्नई की सीट है वहां से। तो ये महत्वपूर्ण लोग हैं जो इस बार चुनाव मैदान में हैं, जिनके नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। मुकेश
3: जी, सुशील, आपका जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए 6 केंद्रों पर मतगणना कड़ी सुरक्षा के बीच जारी है। केंद्र शासित प्रदेश में 294 उम्मीदवारों की राजनीतिक भाग्य का फैसला होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: पहले चरण में सभी 6 मतगणना केंद्रों पर 17 विधानसभा क्षेत्रों के मतों की गिनती की जाएगी। इनमें पुदुचेरी क्षेत्र के 12 निर्वाचन क्षेत्र, कराईकाल के 3 और माहे तथा यानम का एक एक निर्वाचन क्षेत्र शामिल है। शेष 13 निर्वाचन क्षेत्रों की गिनती दूसरे चरण में की जाएगी। शुरुआती रुझान सुबह लगभग 9:30 बजे तक आने की उम्मीद है। ईवीएम और वीवीपैट की गिनती के लिए कुल 166 टेबल और डाक मतपत्रों के लिए 35 टेबल स्थापित किए गए हैं। मतगणना केंद्रों में कड़ी सुरक्षा और प्रवेश नियंत्रण के उपाय लागू हैं। चुनाव अधिकारियों द्वारा जारी क्यूआर कोड आधारित पहचान पत्रों के सत्यापन के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। मतगणना केंद्रों पर मोबाइल फोन जमा करने की व्यवस्था भी की गई है। पुदुचेरी से विभिन्न एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
3: और असम में मतगणना से जुड़ी जानकारी के लिए रुख करते हैं गुवाहाटी में मौजूद हमारे संवाददाता राकेश डोले से। राकेश जी, राज्य में मतगणना के बीच क्या माहौल देखा जा रहा है?
7: जी, असम में विधानसभा चुनाव के मतगणना कुछ समय पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो गई है। राज्य में इस बार 85.96% मतदान दर्ज किया है, जो पिछले विधानसभा चुनावों में सबसे अधिक है। राज्यभर में 40 मतगणना केंद्रों पर गिनती की जा रही है। अधिकांश जिलों में जिला मुख्यालय पर एक एक केंद्र है, जबकि कोकराझार, तिनसुकिया, जोरहाट में दो दो तथा दोगांव में 3 मतगणना केंद्र हैं। पूरी प्रक्रिया पर 126 मतगणना प्रेक्षक कड़ी निगरानी रख रहे हैं, जिनकी सहायता के लिए लगभग 6000 मतगणना कर्मी और 2300 से अधिक माइक्रो ऑब्जर्वर्स तैनात किए गए हैं। 126 सदस्य असम विधानसभा के लिए कुल 722 उम्मीदवार मैदान में हैं। सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 64 है। जी
3: राकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उधर केरलम में भी कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना जारी है। पश्चिम बंगाल में आज 293 सीटों की मतगणना हो रही है।
8: जनादेश 2026।
3: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
8: आज सुबह 8:30 बजे से
3: मतगणना की पल पल की खबर,
8: हर सीट की सटीक जानकारी,
3: संवाददाताओं से ताजा हाल
8: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण,
3: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
8: जनादेश 2026।
3: पांच राज्यों की 7 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनावों की मतगणना भी शुरू हो गई है। ये 7 सीट गुजरात में उमरेठ, कर्नाटक में बागलकोट और दावणगेरे, दक्षिण महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती, नागालैंड में कुरीडांग और त्रिपुरा में धर्मनगर हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने लिपुलेख दर्रे पर नेपाल के दावे को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा है कि यह दर्रा वर्ष 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का मार्ग है और दशकों से इस मार्ग से यात्रा जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संदर्भ में नेपाल के विदेश मंत्रालय के सीमा संबंधी दावों के बारे में ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि संबंध में भारत का रुख स्पष्ट है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे दावे न तो न्यायसंगत हैं और न ही ऐतिहासिक तथ्यों तथा सबूतों पर आधारित हैं। प्रवक्ता ने कहा कि भारत द्विपक्षीय संबंधों के सभी मुद्दों पर नेपाल के साथ सार्थक बातचीत के लिए तैयार है। होर्मुज में फंसे जहाजों के लिए अमरीका प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस परियोजना से सैकड़ों जहाजों और लगभग 20,000 नाविकों को सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध से तटस्थ देश प्रभावित हुए हैं और अमरीका इन देशों के जहाजों को प्रतिबंधित जल क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकालने में सहयोग करेगा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अनुसार इसके लिए मिसाइल नाशकों 100 से अधिक विमानों और 15,000 कर्मियों को तैनात किया जाएगा। श्री ट्रंप ने कहा कि इस प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने वालों के लिए सख्ती से निपटा जाएगा। फरवरी में युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान ने होर्मुज से जहाजों की आवाजाही लगभग बंद कर रखी है। उधर अमरीका ने भी ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी कर दी है। इस बीच पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। समझौते के लिए ईरान के प्रस्ताव पर अमरीका सहमत नहीं है। ईरान के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि ईरान के प्रस्ताव पर अमरीकी जवाब की समीक्षा की जा रही है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान का प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है। एक रिपोर्ट।
9: ईरान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि वो अपने 14 सूत्री प्रस्ताव पर अमेरिका की प्रतिक्रिया की समीक्षा कर रहा है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि योजना का उद्देश्य शत्रुता को समाप्त करना है और इसमें परमाणु मुद्दों का कोई जिक्र नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान परमाणु प्रतिबंधों से संबंधित मांगों को पूरा नहीं करता। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के बीच युद्ध विराम के बावजूद लड़ाई तेज हो गई है और इसराइली सेना ने हाल के दिनों में हिजबुल्ला से जुड़े दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया है। इस बीच हिजबुल्ला भी इसराइली सैनिकों पर रॉकेट और ड्रोन से हमले जारी रखे हुए है। उधर मध्यस्थों के माध्यम से राजनयिक प्रयास भी जारी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण।
3: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रक्षा त्रिवेणी संगम विषय पर 3 दिन की उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि संगोष्ठी परिचालन संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीक के प्रदर्शन और एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण मंच है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज गरज चमक के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में भी ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। बिहार, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल में भी कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। आईपीएल क्रिकेट में कल गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मुंबई में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
10: धन्यवाद मुकेश। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की मतगणना की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, नतीजे आज, निगाहें बंगाल पर। पत्र के अनुसार मतदान केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, देश की राजनीतिक दिशा तय करेंगे तमिलनाडु बंगाल के चुनाव परिणाम। पत्र के अनुसार जनादेश आज, 5 प्रदेशों में दलों की धड़कने तेज। हिन्दुस्तान ने फलता में पुनर्मतदान शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, निर्वाचन आयोग के इस निर्णय की अनुगूंज पूरे देश में पहुंचनी चाहिए कि बाहुबल के सहारे मतदाताओं को डराने और मतदान को बाधित करने का क्या नतीजा हो सकता है। दिल्ली में एसी से लगी आग में 9 लोगों की मौत पर हिंदुस्तान का शीर्षक है, एसी बना काल, 9 को लील गया। नवभारत टाइम्स के अनुसार बुजुर्ग पेरेंट्स को बचाने अंदर दोबारा गई फिर लौट ना सकी। दैनिक जागरण ने आग का सिलसिला शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, गर्मियां बढ़ते ही घरों, कारखानों और अन्य स्थलों पर आग लगने की घटनाओं का सिलसिला तेज होना इसलिए चिंताजनक है क्योंकि अभी तो तापमान और ज्यादा बढ़ने के आसार हैं। इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि आग लगने की ज्यादातर घटनाएं एसी में ब्लास्ट या शॉर्ट सर्किट के कारण हो रही है। राजस्थान पत्रिका ने नया सवेरा शीर्षक से लिखा है, जब आक्रोश बन गया राष्ट्र संकल्प तो आतंक पर फिर हुआ निर्णायक प्रहार।
3: पहली बार तैनात हुई ऑल वुमन कॉम्बैट टीम ने मोर्चे पर दिखाया जोश, दुनिया को बताया अब और नहीं। ऑपरेशन के बाद सामने आई शौर्य गाथाएं। पंजाब केसरी की सुर्खी है, लिपुलेख पर भारत की नेपाल को 2-2। पत्र के अनुसार विदेश मंत्रालय ने नेपाल के दावों को खारिज करते हुए एक तरफा और अनुचित बताया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब हर तरह के मौसम में धरती के कोने कोने पर भारत रख सकेगा दृष्टि। दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि कैलिफोर्निया से हुआ लॉन्च। चीन पाक सहित हर देश की छोटी बड़ी गतिविधि की होगी निगरानी। देशबंधु के अनुसार विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर बोले संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव अंतोनियो गुतरश, तमाम तरह की स्वतंत्रता प्रेस की आजादी पर टिकी, इसके बिना ना तो मानवाधिकार संभव है ना ही शांति। पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा करने का आह्वान किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। असम, पश्चिम केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी विधानसभा चुनावों की मतगणना शुरू। 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनावों की भी मतगणना जारी। भारत ने लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति खारिज करते हुए इसे अनुचित बताया। मौसम विभाग ने हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित उत्तर भारत में आज गरज चमक के साथ वर्षा और ओले पड़ने का अनुमान जताया। अमरीका हॉर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: Akashwani presents Morning News. Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Counting of votes begin for assembly elections in Assam, West Bengal, Kerala, Tamil Nadu and Union Territory of Puducherry. Counting of votes also underway for bipoles in 7 assembly constituencies. India rejects Nepal's objection to Kailash Mansarovar Yatra through Lipulekh Pass, calls it unjustified. IMD forecasts thunderstorms accompanied with hailstorm over North India, including Haryana, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh and Uttarakhand today. United States to launch Project Freedom to guide stranded ships safely out of Strait of Hormuz. And in IPL cricket, Gujarat Titans defeat Punjab Kings by 4 wickets in Ahmedabad last night. And now the news in detail. Counting of votes began for the assembly elections in Assam, West Bengal, Kerala, Tamil Nadu and Union Territory of Puducherry this morning. Counting began at 8 a.m. with postal ballots taken up first, which will be followed by electronic voting machines or EVMs. Early trends are expected to emerge by noon. The Election Commission has made elaborate arrangements to ensure peaceful and transparent counting. Counting of votes is being conducted for 293 seats in West Bengal, 126 assembly seats in Assam, 140 in Kerala, 234 in Tamil Nadu and 30 seats in Puducherry. Now we go over live to our correspondent Kalyan Laha in Kolkata for the latest update on counting. Kalyan, how is counting progressing in West Bengal?
12: At this moment, the postal ballot is being counted. And after the completion of postal ballot, the EVM counting will start. And the Election Commission has taken all the arrangements to conduct a free, fair and a peaceful counting. And three-layer security arrangement has been established at all the counting centers, and there are 77 counting centers in the states. And one thing I should mention that today 293 assemblies, constituencies counting is being held, and Election Commission has ordered repoll in Falta Assembly constituency. That will be held on 21st May, and the result is on 24th May.
11: Thank you, Kalyan, for that update. We also have with us our correspondent Rakesh Dole from Guwahati for the latest update on counting from the state of Assam. Rakesh, what latest update you have for our listeners on counting in Assam?
7: Yes, in Assam, counting of votes for the general elections to the Legislative Assembly got underway a short while ago under tight multi-layer security arrangements. The state has recorded a high voter turnout of 85.96%, the highest in the last five Assembly elections. Counting is being conducted at 40 centers across the state. While most districts have one counting centers each at their headquarters, Kokrajhar, Tinsukia, Jorhat have two centers each and Nogaon has three. The entire process is being monitored by 126 counting observers with support from nearly 6,000 counting personnel and over 2,300 micro-observers. A total of 722 candidates are in fray for the 126-member assembly. The majority mark to form the government stands at 64. Back to you.
11: Thank you, Rakesh. Moving on to Kerala, where we have our correspondent Smithy Paluruthi. Smithy, how is the counting going on for the Kerala Assembly elections?
13: Anuja, counting of postal vote began at 8 a.m. in 140 constituencies across 43 locations in Kerala. EMVs will be brought in for counting within the next few minutes. Initial trends are expected by 9:30 a.m., Anuja. At the same time, all three political fronts are expressing strong confidence about the results. The LDF is anticipating a continuation power, while the UDF is expecting strong comeback. The NDA is hopeful of emerging as a decisive force in the Kerala Assembly. Anyhow, we will have to wait for just 2-3 hours to get a clear picture of the outcome. So let's wait for that, Anuja. That's all, Anuja.
11: Thank you, Smithy, for that update. And now we go over live to Puducherry, where we have our correspondent Bibin S. Nath. Bibin, tell us, how is the counting progressing in Puducherry?
14: Anuja, in the first round, votes from 17 assembly constituencies will be taken up across all six counting centers. It includes 12 constituencies in the Puducherry region, 3 in Karaikal and 1 each in Mahi and Yanam. The remaining 13 constituencies will be taken up in the second round. A total of 859 officials, including counting supervisors, assistants and micro-observers, have been deployed for counting duties. Altogether, 166 tables have been set up for the EVM and VVPAT counting, along with the 35 tables for postal ballots. Anuja.
11: Thank you, Bipin, for that update. And we also have with us our Chennai correspondent, Joy, with latest update on counting in Tamil Nadu. Joy, please give us the latest update on the counting in Tamil Nadu.
15: Good morning, Anuja. The counting has begun in all the polling stations with high security. Counting is taking place in 62 centers. Over 4 crore 58 lakh voters have exercised their franchise this time. The state has 188 general constituencies, 44 SC and 2 SC constituencies. This is the first election after the special intensive roll, Anuja. And 1 lakh police personnel have been involved in protecting the counting centers. Party workers have gathered outside the counting centers eagerly waiting for the results. The key contestants are Union Minister Yal Murugan, and there are three chief ministers during in this election. One is the present Chief Minister M.K. Stalin and two former chief ministers, Edappadi Palaniswami and Mr. O. Paneerselvam. Paneerselvam is contesting as a DMK candidate for the first time from Bodi Naikanur. Actor Vijay is contesting in two constituencies, one in Perambur in Chennai and another one Tiruchi East in Tiruchirappalli. Former Governor of Telangana and Puducherry, Dr. Tamilsai Soundarajan, is contesting from Mylapore. BJP State President Tainar Nagendran and former AIADMK strongman K. Sengotayan is contesting from TVK, the new party, which is expected to give a strong presence in this election. This is the first part. This is their first election. Just 2 years after the fan club of actor Vijay has become the party. Anuja.
11: Thank you, Joy, for that update.
16: Janadesh 2026.
17: Special program on results of assembly elections in Assam, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal and Puducherry.
16: Today, the 4th of May 2026.
17: Our correspondents on the ground will bring the latest developments for you.
16: For in-depth analysis by the experts and latest update of vote counting.
17: Tune into Akashvani Gold along with additional frequencies
16: from 8:30 a.m. onwards today.
17: Janadesh 2026.
11: The counting of votes for 7 assembly bipoles in 5 states is also being taken up this morning. The 7 seats are Umret in Gujarat, Bagalkot and Davangere South in Karnataka, Rahuri and Baramati in Maharashtra, Koridang in Nagaland and Dharmnagar in Tripura. India has rejected Nepal's claim over Lipu Lake Pass, termed it as a long-standing route for the Kailash Mansarovar Yatra since 1954, and the Yatra through this route has been going on for decades. Ministry of External Affairs spokesperson Randhir Jaiswal in a social media post said this in response to claims related to border issues made by Foreign Ministry of Nepal in the context of the annual Kailash Mansarovar Yatra. He stressed that India's position in this regard had been consistent and clear, and this is not a new development. Mr. Jaiswal pointed out that India has consistently maintained that such claims are neither justified nor based on historical facts and evidence. He stressed that such unilateral artificial enlargement of territorial claims is untenable. The spokesperson added that India remains open to a constructive interaction with Nepal on all issues in the bilateral relationship, including on resolving agreed outstanding boundary issues through dialogue and diplomacy. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsoneir.gov.in. and download the News on EIR app. Defence Minister Rajnath Singh will inaugurate a North Tech Symposium on the theme Raksha Triveni Sangam, where technology, industry and soldiering converge in Prayagraj, Uttar Pradesh today. The Ministry of Defence informed that the symposium will serve as a vibrant platform to showcase and integrate state-of-the-art indigenous technologies to overcome operational challenges. Minister of External Affairs Dr. S. Jaishankar interacted with the Indian community in Jamaica. In a social media post, he said that the Prime Minister of Jamaica spoke about the Indian community's contributions. Both leaders discussed the transformation underway, especially in infrastructure, human development and technology-driven governance and entrepreneurship. They also discussed the recent developments in Indian-Jamaica ties. The United States will launch Project Freedom to guide countries with ships stranded in the Strait of Hormuz. President Donald Trump said this effort will help hundreds of vessels and some 20,000 seafarers. In a social media post, he said that neutral and innocent countries have been affected by the Iran war, and the U.S. has told these countries that Washington will guide their ships safely out of these restricted waterways so that they can freely and ably get on with their business. Three people have died and three fell ill after a suspected hantavirus outbreak on a cruise ship en route from Argentina to Cape Verde. According to the World Health Organization, hantavirus is a rodent-borne virus that can cause fatal respiratory illness. The India Meteorological Department or IMD has forecast thunderstorms accompanied with hailstorm over Delhi, Haryana, Himachal Pradesh, Punjab, Uttar Pradesh and Uttarakhand for today. Similar weather conditions are also likely to prevail over parts of Jammu and Kashmir, Ladakh, Jharkhand, Madhya Pradesh and Odisha. It also predicted heavy rainfall at isolated places over Bihar, Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Kerala, Nagaland, Manipur, Puducherry, Uttarakhand and West Bengal. And in sports, in IPL cricket, Gujarat Titans defeated Punjab Kings by 4 wickets in Ahmedabad last night. Chasing a target of 164 runs set by Punjab Kings, Gujarat Titans scored 167 for 6 with one ball to spare. Today, Mumbai Indians will face Lucknow Super Giants at Wankhede Stadium in Mumbai. The match will begin at 7:30 this evening. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
18: Thank you, Anuja. The dailies have mentioned about the three-tier security system in place for election results today, with all eyes on counting centres. Verdict day arrives for high-stakes elections, writes Hindustan Times, while the Pioneer says, from Bengal to Kerala, high voter turnout set the stage for a dramatic result today. Government explores EU-like law to safeguard firms against third country sanctions, cites the Indian Express. In its editorial page, Hindustan Times talks about UAE's exit from the Organization of Petroleum Exporting Countries. It reflects the new security architecture being built around Abu Dhabi. The choice of New Delhi is to be a participant in shaping the new order or be a price taker once it is built. The Times of India mentions about the release

सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 293 सीटों में से 281 के रुझान मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने काफी बढ़त बना ली है और वो 184 सीटों पर आगे है। तृणमूल कांग्रेस गठबंधन 94 सीटों पर आगे चल रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब भवानीपुर सीट पर आगे हो गई हैं। वामदल 2 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं, अन्य 1 सीट पर आगे है। राज्य की फलता सीट पर दोबारा चुनाव कराने का फैसला किया गया है, जहां 21 मई को मतदान होगा। असम में विधानसभा की सभी 126 सीटों के रुझान मिल रहे हैं। सत्तारूढ़ भाजपा गठबंधन ने निर्णायक बढ़त बना ली है और वो 99 सीटों पर आगे है। कांग्रेस गठबंधन 25 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, अन्य 2 सीट पर आगे हैं। केरलम में विधानसभा की सभी 140 सीटों के रुझान मिल गए हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF गठबंधन ने निर्णायक बढ़त बना ली है। ये गठबंधन 96 सीटों पर आगे है। LDF 42 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। भाजपा गठबंधन 2 सीटों पर आगे चल रहा है। तमिलनाडु में विधानसभा की सभी 234 सीटों के रुझान मिल गए हैं। अभिनेता विजय जोसेफ की पार्टी TVK 109 सीटों पर आगे है। AIADMK गठबंधन 73 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। DMK गठबंधन 52 सीटों पर आगे है। अधिक जानकारी के लिए चलते हैं चेन्नई में मौजूद हमारे संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी के पास। सुशील, कहा जा रहा था कि TVK के विजय इन चुनावों में एक्स फैक्टर साबित होंगे और वही होता दिख रहा है। जीत के प्रति आश्वस्त TVK ने सभी 234 सीटों पर चुनाव लड़ा और अब क्या लग रहा है कि विजय MG रामचंद्रन के इतिहास को दोहराने जा रहे हैं?
1: देखिए कनक, विजय की ये जो विजय है राजनीतिक मैदान में वो जबरदस्त है। जिसे आप कहते हैं कि फिल्मी पर्दे पर ब्लॉकबस्टर रिलीज होती है, वैसे इस बार के राजनीतिक मैदान में, इस बार के चुनाव में उनकी ब्लॉकबस्टर रिलीज हुई है और जबरदस्त सफलता मिल रही है। जो आपने तुलना की MGR से, MGR के बारे में कहा जाता है, वो एक विचारधारा से एक राजनीतिक आंदोलन की उपज थे, लेकिन विजय को ये बात उनसे अलग करती है क्योंकि वो किसी राजनीतिक आंदोलन की उपज नहीं है, लेकिन उनका एक करिश्मा है, युवाओं में उनकी एक अपील है, सोशल मीडिया पे वो छाए हुए हैं। तो इस तरीके से विजय का एक अपना करिश्मा और जो सरकार के खिलाफ एक माहौल था, जो सरकार के खिलाफ लोगों की इच्छा थी, एक बदलाव की जो इच्छा थी, वो बदलाव हमें विजय के रूप में सत्ता के करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है। हालांकि अभी तक के जो रुझान है उसके हिसाब से देखें तो वो थोड़ा सा जो जादुई आंकड़ा है 118 का, उससे कुछ पीछे रह सकते हैं, लेकिन अभी ये आने वाले कुछ वक्त समय में स्पष्ट हो जाएगा कि उन्हें कितनी सीटें मिल पाती हैं। जी कनक,
0: जानकारी के लिए धन्यवाद सुशील। पुदुचेरी में विधानसभा की 30 सीटों में से 24 के रुझान मिल गए हैं। AINRC 15 सीट पर आगे है। कांग्रेस गठबंधन 6 सीट पर बढ़त बनाए हुए है, अन्य 3 सीट पर आगे हैं। चुनावों के शुरुआती रुझानों पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाने जा रही है।
2: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं और वहाँ पे हम लोग 180 भी पहुँच सकते हैं। ये पहली बार होगा पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और इसके साथ ही अंग बंग कलिंग, मतलब कि हमारी सरकार बिहार में, हमारी सरकार बंगाल में और हमारी सरकार उड़ीसा में, और पूर्वोत्तर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। असम में भी अगर आप देखो तो हमारी तीसरी बार सरकार बन रही है।
0: इस बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डॉक्टर गिरीश ने दावा किया है कि केरलम में उनकी पार्टी के पक्ष में परिणाम आएगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि तमिलनाडु में परिणाम DMK पार्टी के पक्ष में रहेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि ये केवल शुरुआती रुझान है और पूरी तस्वीर साफ होने पर ही कुछ कहना उचित रहेगा। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों की मतगणना भी जारी है। ये 7 सीटें गुजरात में उमरेठ, कर्नाटक में बागलकोट और दावणगेरे दक्षिण, महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती, नागालैंड में कोरिडांग और त्रिपुरा में धर्मनगर हैं। इनमें से 4 सीटों पर भाजपा बढ़त बनाए हुए है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज सुबह के कारोबार में 1% की बढ़त देखी गई। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और प्रमुख राज्यों में विधानसभा चुनाव के शुरुआती रुझानों से इन सूचकांकों को मजबूती मिली। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 808 अंक उछलकर 77,721 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनक लता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी जीत की ओर अग्रसर। 293 सीटों में से 193 सीटों पर आ गए। तृणमूल कांग्रेस की 93 सीटों पर बढ़त। असम में भाजपा तीसरी बार सत्ता में आने को तैयार। तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके की अपने पहले ही चुनाव में जबरदस्त सफलता। सत्तारूढ़ डीएमके तीसरे स्थान पर, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पीछे चल रहे हैं। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ स्पष्ट बहुमत की ओर। पुदुचेरी में एनडीए की सत्ता में फिर वापसी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने त्रिपुरा, नागालैंड और गुजरात में एक एक सीट जीती। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना के रुझानों से भविष्य की राजनीति की दिशा तय।

0: होने के संकेत मिल रहे हैं। पश्चिम बंगाल और केरल में सत्ता परिवर्तन तय नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में भाजपा को ऐतिहासिक जीत मिलने जा रही है और वो पहली बार इस पूर्वी राज्य में सरकार बनाएगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 293 सीटों में से 292 के रुझान मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने काफी बढ़त बना ली है और वो 193 सीटों पर आगे है। तृणमूल कांग्रेस गठबंधन 93, AJUP 2, AISF 2, कांग्रेस 1 और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 1 सीट पर आगे है। राज्य की फलता सीट पर दोबारा चुनाव कराने का फैसला किया गया है। यहाँ 21 मई को मतदान होगा। पश्चिम बंगाल से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता कल्याण लाहा से। कल्याण, भाजपा पश्चिम बंगाल में जीत की ओर अग्रसर है। पश्चिम बंगाल की TMC से मुक्ति का नारा अब वास्तविकता में बदलता दिख रहा है। TMC के पिछड़ने के क्या प्रमुख कारण हो सकते हैं?
1: देखिए, हम अभी जो दिख रहे हैं ग्राउंड में, BJP बहुत सारे सीट में अभी आगे है। और जो आप बोल रहे हैं क्या क्या कारण हो सकता है, देखिए लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बहुत बड़ा सिचुएशन है इधर, और आर्टिकल जो इंसिडेंट है हुआ है उसके बाद उसके सेम टाइप का बहुत सारे इंसिडेंट है। लैक ऑफ जॉब है और आपका जो डिससेटिस्फेक्शन है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उस उनके अंदर जो डिससेटिस्फेक्शन है, और आपको जैसे मैं पहले बोल रहा था जॉब गवर्नमेंट सेक्टर में कोई भी जॉब ऐसा नहीं है, रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, और आपका जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है जो उसका जिक्र मैं पहले किया था, वो जो आम जनता है उनका गवर्नमेंट के ऊपर जो विश्वास था, जो फेथ है, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। इसका जो रिजल्ट आपको अभी ग्राउंड में दिख रहा है, BJP बहुत सारे सीट में अभी लीडिंग है और एक थम्पिंग मेजोरिटी के साथ सामने आएगा।
0: जानकारी के लिए धन्यवाद कल्याण। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF गठबंधन सत्तारूढ़ LDF से बहुत आगे निकल गया है। वहां विधानसभा की सभी 140 सीटों में से 9 के परिणाम मिल गए हैं। 6 सीटें कांग्रेस, 2 मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और 1 सीट IUML ने जीती हैं। पुतुपल्ली सीट कांग्रेस के चांडी ओमन, हरिपद सीट रमेश चन्नीतला, नीलांबुर सीट आर्यदन शौकत, त्रिशूर सीट राजन जे पल्लन और कोल्लम सीट बिंदु कृष्णा ने जीती। अलतूर से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के TM शशि विजयी रहे। रुझान इस प्रकार है, कांग्रेस 54, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 26, IUML 22 और CPI 9 पर आगे। पुदुचेरी में परिणाम और रुझानों में AINRC की सत्ता बरकरार रहने के साफ संकेत हैं। भाजपा प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि विधानसभा चुनावों के शुरुआती रुझान भाजपा के पक्ष में हैं और पार्टी असम तथा पश्चिम बंगाल में भारी बहुमत से जीत हासिल करने जा रही है। श्री सिन्हा ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने तृणमूल कांग्रेस की राजनीति को नकार दिया है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के रुझान भाजपा के पक्ष में उभर रहे हैं।
2: पश्चिम बंगाल में जो रुझान दिख रहे हैं वो दर्शा रहे हैं कि बंग भूमि में राष्ट्रवाद की तरंग उठी है और रुझान दिखा रहे हैं कि वो निरंतर एक ज्वार में परिवर्तित हो रही है, और जब वो परिणाम में परिवर्तित होंगे तो वो सुनामी के रूप में दिखाई पड़ेगा। 12 वर्षों के सतत प्रयत्न और हमारे केंद्रीय नेतृत्व की दूरदृष्टि के साथ, कार्यकर्ताओं के संघर्ष बलिदान के साथ हम इस मुकाम तक पहुंचते हैं। असम में 2011 के चुनाव में हमारी 3-4 सीट, यहाँ लगातार 3री बार सरकार है। ये अपने आप में दिखाता है कि पूर्वोत्तर में कितना बड़ा बदलाव आया है।
0: भाजपा नेता GVL नरसिम्हा राव ने विधानसभा चुनावों के रुझानों में ऐतिहासिक जनादेश देने के लिए असम और पश्चिम बंगाल की जनता द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनके विकास मॉडल को वोट देना बताया है। भाजपा नेता रवि त्रिपाठी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने भाजपा को स्पष्ट जनादेश दिया है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि ये केवल शुरुआती रुझान है और पूरी तस्वीर साफ होने पर ही कुछ कहना उचित होगा। असम में भाजपा 3री बार सरकार बनाने जा रही है। असम में विधानसभा की 126 सीटों में से 2 के परिणाम मिले हैं। बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के चरण बोरो ने मजबूत सीट जीती है। धेमाजी सीट से सत्तारूढ़ भाजपा के डॉ रनुर पेगू विजयी रहे हैं। भाजपा 78, कांग्रेस 24, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट 9, असम गण परिषद 8, AIUDF 2 और अन्य 3 सीट पर आगे हैं। असम से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राकेश डोले से। राकेश, असम में NDA अपने उम्मीदों के अनुरूप लगातार 3री बार सरकार बनाने जा रही है। असम सोनमलेता मोर्चा पिछड़ गया है, खुद गौरव गोगोई हार गए हैं। श्री गोगोई की हार के पीछे क्या उनके परिवार पर लगे आरोप भी एक कारण है?
3: जो परिवार आप जो बोल रहे हैं परिवार पर लगे आरोप कारण है ये एग्जैक्टली बता पाना मुश्किल है, बट द थिंग इज दैट जो वेलफेयर स्कीम्स और जिस तरह की चीजें एनडीए गवर्नमेंट ला रही थी यहाँ पर, दिस कैन बी अ बिग रीजन, ये बहुत बड़ा एक रीजन बन सकता है,
0: खासकर महिलाओं के लिए जो वहाँ चलाए गए थे कार्यक्रम, उनका भी योगदान रहा है जीत में।
3: जी आप अरुणोदय की बात कर रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एक स्कीम है। अभी बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि वो जो 1250 रुपीज मिल रहे थे मंथली वो बढ़ा के 3000 कर देंगे। फिर आप हम लोग अब जब देखेंगे लास्ट इलेक्शन के साथ कंपेयर करेंगे, अपर असम गढ़ था बीजेपी के लिए, वहाँ पे 36 सीट में से उन लोगों ने एनडीए ने जीता था अराउंड 31, वो वहाँ पे वो गढ़ था। पर अभी आप इस तरह के रुझान देख रहे हैं पूरे असम में, बीजेपी जो है लीड लेकर बैठे हुए हैं, दो तो जीत चुके हैं, फिर एक बीपीएफ जो उन्हीं के घटक पार्टी है जो अलायंस पार्टी है बीटीआर रीजन से, वो भी एक जीत चुकी है। तो इन टोटल 80 बीजेपी जो है 78 सीट पे लीडिंग है अभी, और कांग्रेस मात्र 23 सीट में।
0: जानकारी के लिए धन्यवाद राकेश। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों में से 3 के परिणाम मिल गए हैं और तीनों ही भाजपा के खाते में गए हैं। गुजरात की उमरेड सीट भाजपा उम्मीदवार हर्ष दभाई गोविंद भाई परमार ने जीती। कर्नाटक की बागलकोट से कांग्रेस उम्मीदवार उमेश हुलाप्पा मेती और दावणगेरे दक्षिण से कांग्रेस उम्मीदवार समर्थ शमनूर मल्लिकार्जुन आगे हैं। महाराष्ट्र की राहुरी सीट से भाजपा उम्मीदवार अक्षय शिवाजीराव करदेले और बारामती सीट से पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार सुनेत्रा अजित पवार बढ़त बनाए हुए हैं। नागालैंड की कोरिडांग सीट भाजपा उम्मीदवार दाउचीर आई एम चेन ने जीती। त्रिपुरा की धर्मनगर सीट से भाजपा उम्मीदवार जाहर चक्रवर्ती विजयी रहे। नागालैंड में भाजपा उम्मीदवार दाउचीर आई हिमचेन ने 28 कोरिडांग विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में 3123 वोटों से जीत हासिल की। उन्हें 7317 वोट मिले। उन्होंने निर्दलीय प्रतिद्वंदी तोशिकाबा को हराया, जिन्हें 4194 वोट मिले। इस सीट के लिए कुल 6 उम्मीदवार मैदान में थे। निर्दलीय उम्मीदवार इमती वापांग को 3633 वोट मिले, जबकि राष्ट्रीय जनता पार्टी के आई अबेन जांग को 3219 वोट मिले। निर्दलीय उम्मीदवार इमचाटोबा इमचेन को 147 वोट मिले। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार टी चालुकुम्बा आओ को सबसे कम 144 वोट मिले। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु में विधानसभा की सभी 234 सीटों के रुझान मिल गए हैं। अभिनेता विजय जोसेफ की पार्टी टीवीके ने सभी को चौंकाते हुए 112 सीटों पर बढ़त बना ली है। AIADMK 58, DMK 47, PMK 5, कांग्रेस 4, CPI 2, भाजपा 1 और अन्य 4 सीट पर आगे हैं। चेन्नई से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी से। सुशील, वर्ष 2024 में बनी अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी की अप्रत्याशित जीत ने तमिलनाडु में वर्षों से चले आ रहे डीएमके या AIADMK की सरकार बनाने की परंपरा को तोड़ दिया है। इस जीत के पीछे क्या प्रमुख वजह है?
4: देखिए कनक, जो आप अगर इसकी वजह के उसमें जाएंगे तो पहली चीज तो ये है कि मतदाता ने एक नए सिरे से, खास तौर पे नए मतदाता जो यंग वोटर्स हैं और युवा मतदाता हैं, यंग वोटर्स यानी फर्स्ट टाइम वोटर्स जो पहली बार वोट डाल रहे थे वो 14 लाख के आसपास थे और 1 करोड़ से ज्यादा युवा मतदाता 30 से कम की उम्र के थे। इनके बीच विजय का एक करिश्मा था, एक जादू था। उसके साथ ही जो सरकार के खिलाफ माहौल था, विजय ने उस माहौल को पूरी तरह से भुनाया और जयललिता के जाने के बाद इस तरीके का एक फिल्म स्टार या उस तरीके के करिश्मे वाले विपक्ष के नेता की कमी महसूस की जा रही थी, उस कमी को भरने में विजय जो है वो कामयाब होते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने लोगों से ये वादा भी किया था, उन्होंने कोई द्रविड़ियन पॉलिटिक्स के जो सिंबल्स थे उनको भी अपने साथ अपने प्रचार में जरूर कैरी किया, लेकिन उसका कहीं पर खुले तौर पर सामने जिक्र नहीं आया। वो किसी विचारधारा से प्रेरित होकर के नहीं आए, वो किसी आंदोलन की उपज नहीं थे, लेकिन सरकार के खिलाफ गुस्सा और नई जनरेशन, यंग जनरेशन, जेंजी जो है और युवा जो है उनकी नई सोच ने तमिलनाडु में ये राजनीतिक परिवर्तन दिखाया है जो द्रविड़ियन राजनीति से अलग दिखता जाता हुआ नजर आ रहा है।
0: धन्यवाद, धन्यवाद सुशील। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जमैका में भारतीय समुदाय के साथ चर्चा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि जमैका के प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। दोनों पक्षों के बीच खासकर बुनियादी ढांचे, मानव विकास और तकनीक आधारित शासन तथा उद्यमिता पर विमर्श हुआ। दोनों नेताओं ने भारत जमैका संबंधों में हाल के घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। डॉ. जयशंकर जमैका, सूरीनाम तथा त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा पर हैं। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों के परिणाम घोषित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अब बात करते हैं भाजपा मुख्यालय में मौजूद हमारे संवाददाता दीपेंद्र से। दीपेंद्र, इन चुनावों में भाजपा के प्रदर्शन से पार्टी मुख्यालय में खुशी का माहौल होगा, क्या देख रहे हैं आप वहाँ?
5: बिल्कुल कनक, असम और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए अब पार्टी मुख्यालय में इस वक्त जश्न का माहौल शुरू हो चुका है। पार्टी कार्यकर्ता हाथों में झंडा लिए हुए और जीत की खुशी में नारे लगा रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। इसके अलावा आतिशबाजी भी हो रही है और ढोल नगाड़े की धुन पर जो है जश्न नाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताऊं कि जो बीजेपी के पार्टी के नेता हैं और कार्यकर्ता है, इस जीत को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और भाजपा के सुशासन मॉडल पर जनता के भरोसे को बता रहे हैं। और रुझानों के अनुसार बीजेपी पहली बार जो है पश्चिम बंगाल में सरकार बनाती हुई दिख रही है, वही लगातार तीसरी बार असम में सरकार बनाएगी। और आपको बता दूं कि शाम में प्रधानमंत्री मोदी पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उनके स्वागत के लिए पार्टी मुख्यालय में तैयारियां चल रही है। जी,
0: जानकारी के लिए धन्यवाद दीपेंद्र। भारत ने लिपुलेख दर्रे पर नेपाल के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि दर्रा वर्ष 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का पुराना मार्ग है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत लगातार कहता रहा है कि ऐसे दावे अनुचित और ऐतिहासिक तथ्यों से परे हैं। नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। नेपाल ने कहा है कि ये क्षेत्र उसके अधिकार में आता है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 159 अंक की बढ़ोतरी के साथ 77,073 पर, जबकि निफ्टी 58 अंक की वृद्धि के साथ 24,056 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मुंबई में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से देश भर में आज से अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मना रहा है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी जीत की ओर अग्रसर। 293 सीटों में से 192 सीटों पर आगे, तृणमूल कांग्रेस की 95 सीटों पर बढ़त। असम में भाजपा तीसरी बार सत्ता में आने को तैयार। तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बनने विजय की पार्टी टीवीके की अपने पहले ही चुनाव में जबरदस्त सफलता। सत्तारूढ़ डीएमके पार्टी तीसरे स्थान पर, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पीछे चल रहे हैं। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ स्पष्ट बहुमत की ओर। पुदुचेरी में एनडीए की सत्ता में फिर वापसी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने त्रिपुरा, नागालैंड और गुजरात में एक एक सीट जीती। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: మీరు వింటున్నారు ఆకాశవాణి 102.2 MHz పై కార్యక్రమం. ఇప్పుడు కొన్ని లలిత గీతాలు వింటారు.

0: हमें यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। सड़क पर हमेशा बाई और चलना चाहिए। वाहन चलाने वाले चौराहे पर अगर लाल बत्ती के जलने पर रुकना, हरी बत्ती के जलने पर निकलना चाहिए। विद्यालय और अस्पताल जैसे प्रदेशों में चलते समय धीरे से जाना चाहिए। हॉर्न बजाना नहीं चाहिए। पैदल जाने वाले सड़क पार करना है तो जीब्रा लाइंस देखकर पार करना है।
1: బహుత్ మూల్యవాన్ సమాచార బతాయా, బహుత్ అచ్చా. ముఖ్యంగా రోడ్డు మీద నడిచేవారు బాగా గుర్తు పెట్టుకోవలసింది ఏమిటంటే, నడుస్తూ పుస్తకాలు చదవటం, ఫోన్ మాట్లాడడం ఇలాంటివన్నీ చేయరాదు. వాహనాలు నడిపేవారు కూడా ఫోన్ మాట్లాడుతూ నడపకూడదు. పిల్లలు తెలియక రోడ్డు పక్కన బంతి ఆట అలాంటివి ఆడుతూ ఉంటారు. బంతి కోసం రోడ్డు మీదకి పరిగెడితే ప్రమాదం జరగవచ్చు. ఏదైనా రోడ్డు రూల్స్ పాటించడం అనేది అందరికీ మేలు. ఠీకే ఆలియా, సాహసీ సునీత కహానీ अपने शब्दों में सुनाओ, दस वाक्य में।
0: सुनीता घास लेकर अपनी माँ के साथ घर जा रही थी। रास्ते में रेल की पटरी थी। उन दोनों ने देखा कि पटरी टूटी हुई है। सुनीता और उसकी माँ गाड़ी को रोकना चाहते थे, इसीलिए सुनीता अपनी लाल रंग की ओढ़नी लहराने लगी। इसे देखकर गाड़ी चालक ने सोचा कि वहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। उसने गाड़ी की चाल धीमी करके गाड़ी रोक दी। गाड़ी चालक, गार्ड तथा कुछ लोग सुनीता और उसकी माँ के पास आए। टूटी हुई पटरी देखकर चालक ने कहा कि सुनीता की सूझबूझ से हजारों जाने बच गई। सब यात्रियों ने दोनों के साहस की प्रशंसा की। सुनीता को इस साहसी कार्य के लिए 26 जनवरी को भारत सरकार की ओर से पुरस्कार दिया गया।
1: बहुत अच्छा। मन का साहस विश्वास बढ़ाता है। सभी बाल बालिकाएं निडर होकर अपने आप को और दूसरों को भी मदद करने की कोशिश करना चाहिए। अच्छा आलिया, पाठ यहाँ पर समाप्त करते हैं, चलें।
0: धन्यवाद अध्यापिका जी।
1: सुभाशिष।
2: मीरिंत वरकु साहसी सुनीता 7వ तरगति की हिंदी पाठम विन्नारु। उपाध्यायुलु श्रीमती टी इंदिरा, विद्यार्थिनी शेख आलिया फरहत।
3: ఇంతవరకు హిందీ పాఠం విన్నారు. రంగస్థలి.

0: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा
1: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप विमलेंदु पांडे से समाचार सुनिए।
0: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
1: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
1: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
0: शाम सुहानी हो,
4: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना सांझ के शो सिटी लाइट्स में हर रोज शाम 5 बजे।
1: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
0: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
1: सफर में
0: आपके साथ
1: आकाशवाणी।

0: యువవాణి యువజనుల కార్యక్రమం ఇంతటితో సమాప్తం. ఆకాశవాణి విజయవాడ కేంద్రం సమయం 6 గంటలు కావస్తోంది. ముందుగా 6 గంటలకు హిందీలోను అనంతరం ఆంగ్లంలోను వార్తలు వింటారు. ఆ తర్వాత 6:10 ప్రాంతీయ వార్తలు విశాఖపట్టణ కేంద్రం నుంచి.
1: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సమాచార్ కే సాథ్ మే లవ్లీ నిగమ్. चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मतों की गिनती जारी है. पश्चिम बंगाल में भाजपा बड़ी जीत के साथ पहली बार सरकार बनाने की ओर अग्रसर है. वहीं असम और पुदुचेरी में सहयोगी दलों के साथ सत्ता में वापसी कर रही है. तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी टीवी के इतिहास रचने की ओर है. केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व में यूडीएफ स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ रही है. 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 3 सीट जीत ली है और 2 पर आगे है. वहीं कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली है. पश्चिम बंगाल में 293 विधानसभा सीटों के रुझान और परिणाम मिल चुके हैं. भारतीय जनता पार्टी को 202 सीटों पर बढ़त मिली है. इनमें से वो 20 सीटें जीत चुकी है. तृणमूल कांग्रेस 85 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और इनमें से 8 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई है. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 1, कांग्रेस 2 और अन्य 3 सीटों पर आगे है. मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से आगे चल रही है. नंदीग्राम सीट से शुभेंदु अधिकारी आगे हैं. असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार 3री बार सरकार बनाने जा रही है. विधानसभा की 126 सीटों में से अब तक 52 के परिणाम घोषित हो चुके हैं. भाजपा को 42 सीटें मिली हैं, जबकि उसके सहयोगी एजीपी को 3 और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट को 5 सीटें मिली हैं. दूसरी ओर कांग्रेस और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 1-1 सीट मिली है. उपलब्ध रुझानों के अनुसार भाजपा 40, एजीपी 7 और बीपीएफ 5 सीट पर आगे है. कांग्रेस ने 18 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है. एआईयूडीएफ रायजोर दल को 2 और टीएमसी 1 सीट पर आगे है. भाजपा उम्मीदवार और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जालुकबाड़ी सीट पर आगे चल रहे हैं. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई जोरहाट सीट से चुनाव हार गए हैं. इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने पार्टी को ऐतिहासिक जनादेश दिया है. वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की भारी जीत हर कार्यकर्ता के लिए भावुक क्षण है. केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने सुशासन के लिए भाजपा को वोट दिया है.
2: वेस्ट बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत बड़ी आशीर्वाद मिला है. अगेंस्ट दिस वेस्ट बंगाल पीपल हैव गिवन ए वेरी वेरी क्लियर मैंडेट फॉर दी बेटर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुशासन के लिए एक मैंडेट मोदी जी के नेतृत्व में दिया है एंड पूरा कम्युनिस्ट मुक्त देश हो गया है.
1: केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम और रुझान मिल गए हैं. कांग्रेस के नेतृत्व में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को शानदार जीत मिली है. कांग्रेस को 56 सीट मिली है और वो 7 सीटों पर आगे चल रही है. उसके सहयोगी आईयूएमएल ने 18 सीटों पर जीत हासिल की है और 4 पर आगे है. सत्तारूढ़ सीपीएम को 24 सीटें मिली हैं, 2 पर आगे है. उसके सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 7 सीटें जीती हैं और 1 पर आगे है. केरल कांग्रेस को 7 सीटों पर जीत मिली है और 1 पर आगे है. भाजपा ने 3 सीट जीती हैं. उधर तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अभिनेता से राजनेता बने विजय के नेतृत्व में तमिलगा वित्री कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर इतिहास रचने के लिए तैयार है. टीवी के 87 सीटों पर आगे है और 22 सीटों पर उसे जीत मिल चुकी है. मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में सत्तारूढ़ डीएमके को अब तक 8 सीटें मिली हैं और 51 पर आगे है. एआईएडीएमके को 4 सीट मिली हैं, 41 पर आगे है. पीएम के 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. कांग्रेस 4 सीटों पर आगे है और भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर आगे है. पुदुचेरी में एन रंगास्वामी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाने जा रही है. निर्वाचन आयोग के अनुसार एन रंगास्वामी की एआईएनआरएस पार्टी को 9 सीटों पर जीत मिली है, 2 पर आगे है. भाजपा 2 सीटें जीत चुकी है, 2 पर आगे है. एआईएडीएमके और कांग्रेस 1-1 और डीएमके को 2 सीट मिली है, जबकि 3 निर्दलीय उम्मीदवार भी विजयी हुए हैं. बम्बई शेयर बाजार का संविधि सूचकांक आज 356 अंक बढ़कर 77,269 पर बंद हुआ. निफ्टी 122 अंक बढ़कर 24,119 पर दर्ज हुआ. मुंबई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे मुंबई इंडियंस का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। मुंबई अंक तालिका में 9वें और लखनऊ 10वें स्थान पर है। दोनों टीमों के लिए मुकाबला प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: Good evening. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Initial trends that emerged in counting of votes for all four states and a union territory have sustained as counting rounds progress into the day. BJP is headed for a landslide victory in West Bengal Assembly elections, whereas the ruling dispensations are set to return in Assam and Puducherry. In Tamil Nadu, actor-turned-politician Vijay's party TVK is poised to deliver a super hit on debut. In Kerala, Congress-led UDF is marching towards a clear majority to replace LDF. In assembly by-elections, BJP has won a seat each in Gujarat, Tripura and Nagaland, while Congress has won a seat in Karnataka. In West Bengal, out of a total of 293 assembly seats, results have been declared for 61 constituencies so far. BJP has bagged 48 seats, while Trinamool Congress has won 13 seats. As per the trends available so far, for 232 seats, BJP is leading in 153, while Trinamool Congress is ahead in 73. CPM in 1, Congress in 2, and others in 3. Ruling BJP appears all set to retain power in Assam, securing a historic third successive term. Out of a total of 126 assembly seats, results have been declared for 86 constituencies so far. BJP has bagged 62 seats, while its ally Om Gaur Parikar, AGP, has won 6 seats and Bodoland People's Front, BPF, has secured 8 seats. Congress has gained 7, while ARUTF, Raijor Dal and TMC clinched 1 seat each. In Kerala, results and trends are available for all 140 seats. Congress-led UDF is on course to trounce the ruling LDF. Congress has won 55 seats and is leading in 8 seats. Congress ally RUML has won 15 seats and leading in 7. Ruling CPM has won 22 seats and leading in 4. Ally CPI has won 7 seats and leading in 1 seat. While Kerala Congress has won 6 seats and is leading in 1 seat. Actor-turned-politician Vijay's led Tamil Ragavetri Karagam, or TVK, is all set to create history in Tamil Nadu Assembly elections by emerging as the single largest party. Puducherry is expected to witness the return of a National Democratic Alliance government led by N. Rangasamy's All India NR Congress. Out of a total of 30 seats, results of 20 seats are available. N. Rangasamy's AINRC has won 9 seats, while BJP has bagged 2 seats. AIADMK has got 1 seat, INC has got 1 seat, DMK got 2, TVK has got 2 seats. In assembly by-elections for 7 constituencies across 5 states, BJP has won a seat each in Gujarat, Tripura and Nagaland and is leading in 1 seat in Maharashtra. Congress has won 2 seats in Karnataka. We now go over live to our correspondent Anupam, who is present outside BJP headquarters in Delhi. Anupam, how is the atmosphere at the BJP office after its massive win in West Bengal and Assam and Puducherry assembly polls?
4: Yes, sir. There is a lot of happiness and enthusiasm over here in party headquarters in New Delhi. And after 6:30 p.m., the Prime Minister is about to arrive here to attend the victory.

0: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में भारी जनादेश के साथ इतिहास रचा। असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। पुदुचेरी में एनडीए ने सत्ता बरकरार रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम के लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। जीत का श्रेय देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को दिया। कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे ने केरलम में शानदार जीत दर्ज की। अभिनेता से राजनेता बने विजय की टीवी के पार्टी ने तमिलनाडु में शानदार प्रदर्शन के साथ राजनीति की शुरुआत की। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने 4, कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। एनसीपी की सुनेत्रा पवार ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की। और चुनाव परिणामों से घरेलू शेयर बाजारों में उत्साह का माहौल। सेंसेक्स 356 अंक बढ़ा और निफ्टी 24,100 अंक के पार। अब समाचार विस्तार से। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में भारी जनादेश के साथ इतिहास रचा है। पार्टी असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। वहीं पुदुचेरी में एनडीए ने सत्ता बरकरार रखी है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे ने केरलम में शानदार जीत दर्ज की है। तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की टीवी के पार्टी ने शानदार प्रदर्शन के साथ राजनीति की शुरुआत की है। 5 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में भाजपा ने 4, कांग्रेस ने 2 सीट जीती हैं। एनसीपी की सुनेत्रा पवार ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने विधानसभा की 294 सीटों में से 208 सीट पर बढ़त बना ली है और इनमें से 148 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत भी हासिल कर लिया है। ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस 79 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और इनमें से 54 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई है। वाम दल को 1 सीट मिली है और 1 सीट पर आगे है। अन्य को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से पीछे चल रहे हैं। नंदीग्राम सीट से भी शुभेंदु अधिकारी आगे हैं। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 101 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस को 22 सीटों पर बढ़त मिली है और इनमें से वो 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालकुबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव जीत गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने जोरहाट सीट से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई को हराया। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वित्री कड़गम टीवी के सबसे बड़े पार्टी के रूप में उभर कर इतिहास रचने जा रही है। टीवी के 107 सीटों पर आगे है और इनमें से वो 84 सीटें जीत भी चुकी है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में सत्तारूढ़ डीएमके और उसके सहयोगी दल 74 सीटों पर आगे हैं और इनमें से वो 51 सीट जीत चुके हैं। एआईएडीएमके और उसके सहयोगी दल 53 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, इनमें से 35 सीट जीत चुके हैं। पीएमके 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। तमिलनाडु में चेन्नई से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी से। जी सुशील, विजय की टीवी के पार्टी की अप्रत्याशित जीत की प्रमुख वजह क्या रही?
1: देखिए लवलीन, जो विजय को सफलता मिली है, उनकी पार्टी टीवीके को सफलता मिली है, ऐसी किसी भी राजनीतिक विश्लेषक को कम से कम चुनाव परिणामों से पहले तक उम्मीद नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से युवाओं के बीच विजय का क्रेज था, उनकी एक ब्रांड इमेज सोशल मीडिया पर वो जिस तरीके से वायरल हो रहे थे और खासतौर पर जिस तरीके से तमिलनाडु में 1 करोड़ से ज्यादा युवा वोटर थे, जिसमें 14 लाख से ज्यादा पहली बार बने वोटर थे, यानी जेंजी हम कह सकते हैं, तो युवाओं का एक जबरदस्त समर्थन मिलता हुआ उन्हें दिख रहा है। इसके अलावा जो जयललिता के निधन के बाद एक तरीके से एक सिनेमाई करिश्मा की उम्मीद तमिलनाडु के वोटरों को हमेशा रही है, सिनेमा के लोगों को उन्होंने हमेशा हाथों हाथ लिया है, चाहे एमजीआर की बात हो या फिर जयललिता की बात हो, तो एक लंबे वक्त तक सिनेमा के प्रति यहां के वोटरों का आकर्षण रहा है और वो इमेज और पुख्ता हुई है विजय के आने के बाद। तो एक तरीके से उन्हें जबरदस्त समर्थन युवा वर्ग से भी मिला और खासतौर पर जो एंटी इनकम्बेंसी यानी जो सत्ता के विरोधी मत थे, उनमें भी उन्होंने एक बड़ी संख्या में मतों को हासिल किया। हम जानते हैं कि 5 साल से ज्यादा जो है सरकार दोबारा रिपीट होने का यहां पर चलन नहीं।

0: चाहा है। तो उस चरण को देखते हुए डीएमके के खिलाफ जो वोट थे, एंटी इनकम्बेंसी जो वोट थे, वो बड़ी संख्या में उनके पक्ष में गए हैं। तो एक तरीके से उन्होंने पूरे राजनीतिक समीकरण को बदल दिया है और जबरदस्त सफलता हासिल की है। जी लवलीन,
1: धन्यवाद सुशील इस जानकारी के लिए। उधर केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसके निर्णायक वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML ने 22 सीटें जीत ली हैं। पूरे राज्य में गठबंधन की स्थिति मजबूत है। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं, 4 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की सरकार फिर से बनने जा रही है। कुल 30 सीटों में से 28 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की AINRC ने 12 सीटें जीती हैं और 2 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। AIADMK को 1 सीट मिली है, कांग्रेस को 1 सीट मिली है, DMK को 5 सीटें मिली हैं। असम से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राकेश टोले से। जी राकेश, असम में एनडीए उम्मीदों के अनुरूप लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, यही दर्शाता है कि लोगों ने उनके कार्यों पर विश्वास बनाए रखा है।
2: जी, 2026 के असम विधानसभा चुनाव परिणाम राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाते हैं। देखिए, भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की 102 सीटों के साथ प्रचंड जीत के पीछे मजबूत नेतृत्व, राजनीतिक गठबंधन प्रबंधन और विकास के साथ पहचान की राजनीति के संतुलित उपयोग जैसे कई प्रमुख कारक रहे। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा इस जीत के केंद्रीय सूत्रधार के रूप में उभरे। इस जीत में लक्षित कल्याणकारी नीतियों की भी अहम भूमिका रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास भी एक महत्वपूर्ण कारक रहा। ब्रह्मपुत्र नदी पर बड़े पुलों का निर्माण, सड़क संपर्क में सुधार और नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना ने डबल इंजन सरकार की कार्य क्षमता को जमीन पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया। अवैध घुसपैठ को रोकने और जनसंख्या संतुलन से जुड़े मुद्दों को उठाने की राजनीति मतदाताओं के बीच गहराई से प्रभावी रही। जी
1: धन्यवाद राकेश जानकारी के लिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
3: ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है, ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर।
1: श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणाम लोकतंत्र की जीत है।
3: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि देश में गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भाजपा का कमल खिला हुआ है।
3: आप सबको कहा था, गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगा सागर तक जाती है। बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब पश्चिम बंगाल, आज माँ गंगा के इर्द गिर्द बसे इन राज्यों में BJP NDA सरकार है।
1: श्री मोदी ने कहा कि इस बार चुनाव में मतदान के रिकॉर्ड बने और महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक रही।
3: पश्चिम बंगाल में करीब 93% मतदान होना अपने आप में ऐतिहासिक रहा है। असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरलम में भी मतदान के नए रिकॉर्ड बने हैं। इसमें भी महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक रही है। ये भारतीय लोकतंत्र की सबसे उजली तस्वीर बन रही है।
1: भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने भाजपा और एनडीए पर भरोसा जताने और समर्थन देने के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पार्टी के अनगिनत कार्यकर्ताओं के बलिदान

0: मैदान संघर्ष और शहादत का परिणाम है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने केरलम के लोगों को निर्णायक जनादेश के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि केरलम में प्रतिभा है, क्षमता है और यूडीएफ सरकार इन दोनों का सदुपयोग करेगी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव एम ए बेबी ने कहा है कि पार्टी केरलम में जनता के फैसले का सम्मान करती है और राज्य में हार के कारणों का आत्मनिरीक्षण करेगी। और चुनाव परिणामों से घरेलू शेयर बाजार में उत्साह का माहौल है। आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 356 अंक बढ़कर 77,269 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 122 अंक बढ़कर 24,119 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 17 पैसे कमजोर होकर 95.08 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टीम के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: ये आकाशवाणी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बलों और उद्योग ने बदलती परिस्थितियों का विश्लेषण और समझ विकसित कर ली है। उन्होंने कहा कि देश की तैयारी हमेशा अद्यतन उच्च स्तरीय तथा मानक के अनुरूप रहती है और ऑपरेशन सिंदूर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नॉर्थ टेक सिंपोजियम के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने भारतीय रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने मूगा रेशम उत्पादन में मिजोरम को राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बनाने की महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत की। श्री सिंह ने दिन में आइजोल के रेमाबॉक क्षेत्र में स्थित सेरिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने रेशम कताई फैक्ट्री का निरीक्षण किया। श्री सिंह ने बताया कि मिजोरम को मूगा रेशम उत्पादन में अग्रणी बनाने के प्रयास जारी हैं। UPI दुनिया के सबसे बड़े भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में उभर कर सामने आया है। UPI से अप्रैल के महीने में 22 अरब 35 करोड़ लेन देन किए गए। ये 11 अप्रैल 2016 को अपनी शुरुआत के एक दशक बाद दुनिया की सबसे बड़ी भुगतान प्रणाली बन गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद भारत और जमैका के घनिष्ठ संबंध हैं। दोनों ही ग्लोबल साउथ के विकासशील राष्ट्र होने पर गर्व करते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ही देशों ने वैश्विक समुदाय में अपनी अलग पहचान बनाई है। जमैका में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत उत्सवों, खेलों और मुश्किलों के हर पल में जमैका के साथ खड़ा रहा है। प्रसार भारती के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रसून जोशी ने आज नई दिल्ली में सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। उन्हें पिछले सप्ताह प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इससे पहले श्री जोशी मुंबई में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं। मुंबई में IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 179 रन बना लिए हैं। मुंबई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव ने इस वर्ष होने वाली अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान आयोजन के संबंध में योजना बनाने और समन्वित क्रियान्वयन पर विचार विमर्श किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में भारी जनादेश के साथ इतिहास रचा। असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। पुदुचेरी में NDA ने सत्ता बरकरार रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम के लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। जीत का श्रेय देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को दिया। कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे ने केरलम में शानदार जीत दर्ज की। अभिनेता से राजनेता बने विजय की। TVK पार्टी ने तमिलनाडु में शानदार प्रदर्शन के साथ राजनीति की शुरुआत की। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने 4, कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। NCP की सुनेत्रा पवार ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की। और चुनाव परिणामों से घरेलू शेयर बाजार में उत्साह का माहौल। सेंसेक्स 356 अंक बढ़ा और निफ्टी 24,100 अंक के पार। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: जनादेश 2026
1: असम केरलम तमिलनाडु पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम
2: An election like none other with unprecedented momentum and movement and a historic result at the end of the day. Welcome to this special program, Janadesh 2026 on Akashvani. We are covering and analyzing the results of four states and one union territory. I am Vaibhav Jyotsna Srivastav with my co-anchor Sonu Sood.
3: Dhanyavad Vaibhav. Aur aaj is Bharat Rajniti ke mahatvapurn din par charcha ke liye hamare saath studio mein do ahem कहें कि पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़े हैं प्रफुल केटकर जी और मिस्टर केवी प्रसाद आप दोनों का ही स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है
4: धन्यवाद
3: सो जैसा कि हम जानते हैं कि आज जो विधानसभा चुनाव अप्रैल में हुए चार राज्यों में और एक केंद्र शासित प्रदेश में उनके रिजल्ट्स आए हैं वेस्ट बंगाल आ रहे हैं रादर रिजल्ट्स अभी तक पूरा नहीं हुआ है रिजल्ट का जो प्रोसेस है अभी भी काउंटिंग चल रही है वेस्ट बंगाल तमिलनाडु केरला असम और पुदुचेरी सो अगर हम शुरुआत वेस्ट बंगाल से करें जिस पर बहुत सबकी नज़रें थी और बहुत स्पर्धा थी इस चुनाव में अगर मिस्टर केवी प्रसाद आपके पास आए तो क्या लगता है आपको जिस तरह का जनमत आया है बीजेपी के फेवर में 200 से अधिक सीटें 294 सीट्स के जो असेंबली है उसमें इतनी बड़ी जो बहुमत आई है किन उम्मीदों और किस विश्वास पर ये जनमत उनको मिला है प्राप्त हुआ है और भारतीय राजनीति के लिए आप इसको कितना बड़ा मील का पत्थर मानते हैं
4: देखिए एक तो 15 साल के जो शासन था ममता बनर्जी का उसके खिलाफ उनके विरुद्ध काफ़ी सारे समस्याएं थी और भारतीय जनता पार्टी ने एक ही बात कही थी जो कि मूल मुद्दा जिसे आप पूछें कि परिवर्तन लाएंगे हम पूरे प्रक्रिया में उसमें मतलब बंगाल में चाहे आर्थिक तौर से चाहे वहाँ लॉ एंड ऑर्डर को ले तमाम सारे मुद्दे जो कि जनता से जुड़े हुए थे और जनता और ये मत सोचिए कि ये सिर्फ 14 दिन का कैंपेन है कि अगर आप देखें जब से लोकसभा खत्म हुआ उसके बाद से लगातार ये प्रयास चलता रहा और विपक्ष के जो नेता हैं सुवेंद्र अधिकारी वो भी सदन में और वहाँ पे एक माहौल उन्होंने इस तरह का तैयार किया और तो उस ये सब जुड़ता चला गया और बंगाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि एक ज़माने में वामपंथियों का गढ़ माना जाता था 34 साल तक उन्होंने लगातार 77 के बाद जब तक ममता ने उनको हराया नहीं तो वो जीतते रहे तो ऐसे में उस किला को पहले ममता ने गिराया अब ममता का किला को बीजेपी ने हिलाया
3: जी बिल्कुल सो 293 सीटें हैं यहाँ पे और भारतीय जनता पार्टी को 168 सीटों पर जीत प्राप्त हो चुकी है और 40 सीटों पर वह आगे चल रही है सो जो प्रदेश है पश्चिम बंगाल उसके भविष्य के लिए आप क्या अब एक आशा है आपको किस तरह के बदलाव आने की उम्मीद की जा सकती है
4: देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो परिवर्तन की बात की है वो परिवर्तन तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं और उसमें उनको लग रहा था कि भाई जैसे कहें कि सबसे पहले सुशासन और भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ सरकार बनाई दी है वो डबल इंजन सरकार की बात करती है और शायद वो एक बंगाल के नागरिकों ने जिन्होंने चाहा कि सरकार बदले तो उसका परिणाम हमारे सामने है
2: मिस्टर केतकर माय क्वेश्चन वुड बी टू यू द प्राइम मिनिस्टर टॉक्ड अबाउट पेइंग अ डेट टू श्यामा प्रसाद मुखर्जी द मेंटोर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी ही टॉक्ड अबाउट द पब्लिक्स ट्रस्ट इन द परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स ही टॉक्ड अबाउट एक भारत श्रेष्ठ भारत ही टॉक्ड अबाउट द डिफीट ऑफ फियर पोलराइजेशन एंड अपीजमेंट एंड वी ऑल्सो सॉ अ हिस्टोरिक नंबर ऑफ डिप्लॉयड पर्सनल इन द वेस्ट बंगाल इलेक्शंस व्हाई वॉज दिस रिक्वायर्ड और वॉज दिस चेंज ऑन द कार्ड्स
5: सी वैभव इफ वी सी द हिस्ट्री ऑफ बंगाल पॉलिटिक्स From 1937, pre-independence period, when Muslim League came to power, every election has been marred with violence. Every election, without any exception.
4: True.
5: During Communist Party's rule, that got the state patronage, like Sohrawardi did during Muslim League government. And then eventually, you know, the politicization of state machinery started. So, Prasadji said, you know, from Lok Sabha elections, I see the preparation from last Vidhan Sabha elections.
4: True that.
5: The way BJP workers, you know, faced intimidation And somehow BJP last time could not, you know, give that kind of confidence.

0: अभी तक आपने सुना प्रदीप चटर्जी के स्वर में भक्ति गीत। श्रीमती टी ज्योति की वार्ता, शीर्षक है भारत के बहुमूल्य साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर।
1: फूलों की पंखुड़ियों को तोड़कर आप उसकी सुंदरता को इकट्ठा नहीं करती। इसका मतलब है कि अगर फूलों के पंखुड़ियों को तोड़ता चोड़ गए तो उन फूलों की सुंदरता पंखुड़ियों के साथ ही रहती है। यह सुंदर और अनमोल वाक्य श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी का है। रविंद्रनाथ टैगोर भारतीय संस्कृति के प्रतीक थे। वह एक कवि, दार्शनिक, संगीतकार, लेखक और शिक्षावादी थे। रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार विजेता बनने वाले पहले पश्चिमी थे। उन्होंने 1913 में गीतांजलि के संग्रह के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। उन्हें लोकप्रिय रूप से गुरुदेव कहा जाता था और उनके गीतों को लोकप्रिय रूप से रविंद्र गीत कहा जाता था। उनके रविंद्र संगीत कौनन के दो गीत भारत और बंगाल देश के राष्ट्रीय गीत है, जनगणमन और अमर सोनार बंगाल। रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर थे और माता का नाम शारदा देवी था। रविंद्रनाथ जी उनके 13 बच्चों में से सबसे कम उम्र के थे। घर में

0: उन्हें सभी रबी कहकर बुलाते थे। टैगोर बहुत ही युवा थे जब उनकी माँ की निधन हो गया और उनके पिता ज्यादातर समय दूर रहते थे। उन्हें घरेलू मदद के लिए आगे आना पड़ा। टैगोर कलात्मक प्रेषक थे जो बंगाली संस्कृति और साहित्य पर अपने प्रभावशाली प्रभाव के लिए पूरे बंगाल में जाने जाते थे। उन्होंने प्रशंसित आयु से थिएटर की दुनिया, संगीत और साहित्य का पेशा किया। जब वहाँ 11 वर्ष के थे, वहाँ पूरे भारत के दौरे पर अपने पिता के साथ थे। इस यात्रा के दौरान उन्होंने मशहूर लेखकों के कामों का पढ़ा, जिसमें कालिदास भी शामिल थे। वापस आने पर उन्होंने 1877 में मैथिली शैली में एक लंबी कविता बनाई। वह कानून का अध्ययन करने के लिए ब्रिटेन, ईस्ट ससेक्स, इंग्लैंड चले गए। उन्होंने कुछ समय के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में पढ़ाई की, जिसके बाद उन्होंने कुछ 1880 में बिना किसी डिग्री के बंगाल में लौटकर अपनी साहित्य रचनाओं में बंगाली और यूरोपियन परंपराओं को लुभाया। 1882 में उन्होंने अपनी सबसे प्रशंसित कविताओं में से एक निर्जर स्वप्रभांग को लिखा था। 1890 में शिलादह में उनकी पौत्रिक संपत्ति के दौरे के दौरान उनके कविताओं का संग्रह मानसी जारी किया गया था। 1891 और 1899 के बीच की अवधि फलदायी साबित हुई, जिसके दौरान उन्होंने लघु कथाओं का एक विशाल 3 खंड संग्रह गलापगुच्छा लिखा। 1901 में रविंद्र जी शांति निकेतन में चले गए, जहां उन्होंने 1901 में प्रकाशित नैवेद्य की रचना की। 1906 में खोई प्रकाशित किया। उसके बाद उनके कई रचनाएं प्रकाशित हुए और उन्होंने बंगाली पाठकों के बीच बेहद लोकप्रिय हासिल की। फिर 1912 में वहाँ इंग्लैंड गए। वहाँ उन्होंने कुछ प्रमुख लेखक विलियम बटलर एटस, एजारा पौंड, रॉबर्ट ब्रिस, अनेस्ट रईस और थॉमस टार्ग मुरे समेत के सामने अपनी रचनाओं को पेश किया। गीतांजलि के प्रकाशन के बाद अंग्रेजी बोलने वाले देशों में उनके लोकप्रियता में कई गुण बढ़ी और बाद में 1913 में उन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1915 में उन्हें ब्रिटिश क्राउन द्वारा नाइटहुड प्रदान किया गया था, जिसे बाद में उन्होंने 1919 में त्याग दिया। मई 1916 से अप्रैल 1917 तक वहां जापान और अमेरिका में रहे, जहां उन्होंने राष्ट्रवाद और व्यक्तित्व पर व्याख्यान दिया। 1920 और 1930 के दशक में उन्होंने दुनिया भर में बड़े पैमाने पर यात्रा की। लैटिन अमेरिका, यूरोप और दक्षिणी पूर्वी एशिया का दौरे में अपने व्यापक पर्यटन के दौरान उन्होंने अंतहीन प्रशंसकों को अर्जित किया। राजनीतिक दृष्टिकोण टैगोर के राजनीतिक दृष्टिकोण थोड़ा अस्पष्ट था। उन्होंने महात्मा गांधी स्वदेशी आंदोलन की आलोचना की। 1925 में द कल्ट ऑफ चरखा प्रकाशित किया गया। उन्होंने ब्रिटिश और भारतीयों के सह अस्तित्व पर विश्वास किया और कहा कि भारत में ब्रिटिश शासन राजनीतिक लक्षण किया और हमारी सामाजिक बीमारी है। उन्होंने कभी भी राष्ट्रवाद का समर्थन नहीं किया और इसे मानवता के सामने आने वाले सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक माना। इस संदर्भ में उन्होंने एक बार कहा था, एक राष्ट्र वहाँ है जो एक पूरी आबादी मानती है, जब एक यांत्रिक उद्देश्य आयोजित किया जाता है, फिर भी उन्होंने कभी-कभी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया। एक स्वतंत्र भारत के प्रति उनके विचार न सिर्फ विदेशी शासन से अपनी आज़ादी पर आधारित था, बल्कि नागरिकों के विचार, कार्रवाई और अंतःकरण की स्वतंत्रता पर आधारित था। हालांकि वहाँ एक के रूप में अधिक प्रसिद्ध है, लेकिन टैगोर एक समान रूप से अच्छी लघु कहानी लेखक, गीतकार, उपन्यासकार, नाटककार, निबंधकार और चित्रकार भी है। उनकी कविताओं, कहानियों, गीतों और उपन्यासों से समाज में एक अंतर्दृष्टि प्रदान की, जो धार्मिक और सामाजिक सिद्धांतों के साथ प्रचलित थी और बाल विवाह जैसे बीमारियों से पीड़ित थी। उन्होंने स्त्रीत्व के सूक्ष्म, नरम और उत्साही पहलू को जोड़कर एक पुरुष प्रभुत्व वाले समाज के विचार की निंदा की, जो मनुष्य की असंवेदनशीलता से कम हुआ। जब हम उनके किसी भी रचना को पढ़ते हैं, एक निश्चित रूप से एक ही बात सामने आती है, यह महान लेखक एक बच्चे के रूप में प्रकृति की गोद में बड़ा हुआ, जिसने उस पर एक गहरी छाप छोड़ दी, जिससे स्वतंत्रता की भावना पैदा हुई, जो उन दिनों के प्रचलित सामाजिक रीति रिवाजों से अपने मन, शरीर और आत्मा को मुक्ति देता था। वह प्रकृति से कितना भी करीब थी, पर वहाँ कभी भी जीवन को कठोर वास्तविकताओं से दूर नहीं थे। उन्होंने जीवन और समाज को अपने चारों ओर देखा, कठोर रीति रिवाज और रूढ़िवादी से ग्रस्त उनकी सामाजिक आलोचनाओं की आलोचना उनके अधिकांश कार्य का अंतर्निहित विषय है। वह एक निपुण गीतकार थे। टैगोर ने 2230 गाने लिखे, जिन्हें अक्सर रविंद्र संगीत कहा जाता है। उन्होंने भारत के लिए राष्ट्रगान जनगणमन और बंगाली देश अमार सोहान बंगाल भी लिखा, जिसके लिए हम हमेशा उनके लिए श्रणी बने रहेंगे। उनके महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी साहित्य कार्य के लिए 14 नवंबर 1913 को उन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1940 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें शांति निकेतन में आयोजित एक विशेष समारोह में डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर की उपाधि से सम्मानित किया। वह अपने जीवन काल के अंतिम दौरे में शारीरिक रूप से कमजोर हो गए। आखिरकार 80 वर्ष की उम्र में 7 अगस्त 1941 को इस अखंड भारत का चमकता हुआ तारा बुझ गया, यानी वे इस दुनिया से चल बसे।
1: भारत के बहुमूल्य साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर, ये थी श्रीमती टी ज्योति की वार्ता जो अभी तक आपने सुना। आइए आप सुनते हैं श्रीमती शेख हासिमबी की कहानी।
2: गीता के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। बड़ी बहन सीता और जीजा जी ने ही उसे पाला पोसा और दिवाकर के साथ विवाह रचाया। विवाह होकर 10 साल हुए थे, दोनों बच्चे हुए। मधुर दाम्पत्य जीवन में किसी चीज की कमी तो नहीं रही, फिर भी एक बात गीता के मन को अक्सर ठेस पहुंचा रही है। कोई जाने तो बात सीधी सी लगती है, पर हृदय को टुक टुक करने में बड़ी सशक्त है। दीपावली के अवसर पर जब वे लोग बड़ी बहन के घर गए थे, तभी सीता ने गीता के मुंह से असलियत को जान लिया। पहले सीता घबरा गई, थोड़ी देर सोचने के बाद उसे एक उपाय सूझा। गीता को धीरज बांधकर उसे पति के साथ भेज दिया। ठीक 10 दिनों के बाद वह खुद गीता के घर पहुंच गई। बिना सूचना के सवेरे सवेरे आई हुई भाभी को देखकर दिवाकर एकदम चकित हुआ। गीता अपनी दीदी को देखकर संतोष और तनाव से तिलमिला गई। दीदी क्या करेगी, अब क्या होगा, यही प्रश्न उसके मस्तिष्क को कुरे

करने आया था, अब एसपी बन गया है। हम लोग पुलिस विभाग से डरते थे, इसीलिए ना कह दिया, पर आज तो उसकी शान देखकर जी भर जाता है। बड़ा सा बंगला, नौकर चाकर, 2-3 गाड़ियां, वो क्या वैभव है। सीता बोलती जा रही थी, जब तक गीता लौट आई तब तक दिवाकर का चेहरा फीका पड़ा हुआ नजर आया। वह सिर झुकाकर नाश्ता कर रहा था। अगला दिन रविवार था। दोपहर के भोजन के बाद सब टीवी देख रहे थे। सीता ने बड़े उत्साह के साथ कहा, सुना है देवर जी उस गीत को? उसकी रचना की मोहन ने। मोहन ने भी खबर भेजी थी हमारी गीता के साथ शादी करने के लिए, लेकिन तब तक आपके साथ बात पक्की हुई थी। हाल ही में उसकी एक पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उसका नाम रहा मोमबत्ती। देवर जी के चेहरे को परीक्षा की दृष्टि से ताकती रह गई सीता। किसी चीज को ढूंढने के बहाने गीता तब तक वहां से खिसक गई। 2 दिन यों ही बीत गए। तीसरे दिन की शाम को सीता ने एक पॉकेट को गीता के हाथ में रखा और यों कहा, अरे गीता, मैं तो भूल ही गई, ये लो, इसे चंद्रशेखर की छोटी बहन पद्मा ने दिया। उसने बताया कि चंद्रशेखर अमेरिका से सदा के लिए लौट रहा है, फिर जाएगा नहीं। भाभी जी, आखिर यह चंद्रशेखर है कौन? मैंने तो इसका नाम तक सुना नहीं है, दिवाकर ने उत्सुकतावश प्रश्न किया। गीता ने भी कुतूहल के साथ दीदी की ओर देखा। हाँ, बताती हूँ, चंद्रशेखर के नाम को हमारी गीता ने भी नहीं सुना होगा। वह गीता से विवाह करना चाहता था, पर देखने के लिए घर भी नहीं आया, सिर्फ खबर भेजी थी। उस वक्त गीता शायद इंटर पढ़ रही थी, छोटी बच्ची है, उसे अमेरिका भेजने से हम लोग विमुख थे, इसी कारण सीधा ना कह दिया, वरना आज गीता की खुशहाली की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। बड़े चाव के साथ बता दिया सीता ने। दिवाकर का चेहरा फीका पड़ गया था, गंभीर होकर वहां से निकल गया था। सीता और गीता एक दूसरे की ओर देखती रह गईं। उस रात को दिवाकर सो नहीं पाया, उसका मन तरह तरह के विचारों से भर गया। गहरी नींद में लगी हुई गीता का मासूम चेहरा उसे बड़ा प्यारा लगा। भाभी जी तो हमेशा बड़े प्रेम के साथ व्यवहार करती थी, मीठी वाणी में बोलती थी, आखिर अब की बार ऐसा क्यों कहने लगी है? सोचते सोचते उसके मन की अस्पष्ट शंका ने स्पष्ट रूप धारण किया। एक एक घटना उसके मस्तिष्क में मंडराने लगी। गीता, अगर तुमसे शादी नहीं कर लेता तो अब तक मैं करोड़पति बनकर रहता था। अरे वो गीता, जानती हो, मुझसे शादी करने के लिए एक लेडी डॉक्टर का प्रपोजल आया था। बिल्कुल डोमिनेटिंग रह जाएगा सोचकर मैंने ना कह दिया, वरना आज तक बहुत कुछ कमाया होता। गीता, सुनती तो हो ना, शायद मेरी माँ ने बताया होगा जन्म कुंडली में दोष के कारण छूटे हुए इस रिश्ते के बारे में। उसका नाम था सिरी, सचमुच लक्ष्मी ही थी भाई। उसका पिता उसी जमाने में एमएलए रहा, अब तो मिनिस्टर बना हुआ है, मिनिस्टर। विधि की लीला ही विचित्र है, सब कुछ प्रारब्ध ही मानो, नहीं तो आज कितना जबरदस्त रहता था। गीता, कविता के गीतों को तुमने सुना है ना? क्या सुर है यार, आजकल उसके कितने ही कैसेट्स निकल रहे हैं। सुना है फिल्मों में भी काम कर रही है, खूब रुपया और नाम कमाया है उसने। उसके पिता ने हमारे घर के कितने ही चक्कर काटे मुझसे अपनी बेटी का हाथ पीला करने, बिल्कुल नाटी होने के कारण मैंने नकार दिया। काश, भविष्य की कल्पना किसे होती है? एक तुम जो हो, कुछ गाना तो दूर, ज्यादा बोलती भी नहीं हो, हमेशा मूक बनी रहती हो, तंग आता है तुमसे। गीता, बैंक वाली लड़की का रिश्ता भी यों ही छूट गया। वह तो अब अफसर बनकर इसी शहर में काम कर रही है, जिसके नसीब में जो लिखी होती उसी का हाथ थामना पड़ता है, क्या करें। जाने अनजाने में शान और गर्व के साथ दिवाकर जब तब ऐसी बातें करता था, उन्हें सुनते ही गीता का चेहरा

0: मलिन हो जाता था, उदास रहती थी 2-3 घंटों तक। उसकी आंखें कभी कभी तरल होती थीं, असहन से उसका मन छटपटाता था, पर दिवाकर की ओर से अपने छूटे रिश्तों की बयानबाजी का यह पुराना सिलसिला सदा जारी रहता था। समय के बीतते बीतते गीता सूना सूना दिखाई देने लगी। इन बातों से उसके हृदय को भारी सदमा पहुंचा। बेचारी कर भी क्या सकती है, सहज में बड़ी विनम्रा रही, उल्टा कुछ कहने की आदत ही नहीं रखती थी। अपने दिल की दर्द को भाभी जी से बताई होगी, इसी के नतीजे में मुझे ये ताने सुनने पड़े हैं। हाँ हाँ यही हुआ होगा, जो बोए सो पाए, और क्या। बात साफ होते ही उसके मन को राहत मिली। सवेरे जागते ही उसने निसंकोच अपनी भाभी से माफी मांगा। खबर गीता तक पहुंच गई, वह सजल नेत्रों से पति के बाहों में सिमट गई।
1: सिक्के के दो पहलू। अभी तक आपने सुना श्रीमती शेख हासिमबी की कहानी। आइए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं श्री शेख हुमायून बादशाह की कविताएं।
2: सबका मालिक एक है, गंगा यमुना सिंधु सरस्वती विमल सलिल धारा के पवन नदियां जल जल कल कल नाद करते उछलते कूदते चलते हैं सागर की ओर। नदियां अनेक हैं लेकिन संगम स्थान एक है, वही करतूत है करतार का महान। नदियां अनेक लेकिन एक है संगम स्थान, वही करतूत है करतार का महान। पीपल बरगद आम नीम पेड़ अनेक, फल फल के मजे स्वाद अनेक। जनहित के काम में आते हैं तरह तरह से अनेक, यही विचित्र है उनका जन्म स्थान जमीन एक। बाग में खिलते हैं फूल अनेक, रंग होते हैं उन सबके तरह तरह। खुशबू फैलाते हैं वे अलग अलग, लेकिन माला में बिंध कर भगवान की शोभा बढ़ाते हैं बनकर एक। दुनिया में मजहबे अनेक, पर माँ का दूध है सफ़ेद। सबका खून का रंग है एक, फिर सब धर्मों का रहस्य है सबका मालिक एक। फिर मानव क्यों बनते हैं भाई हैवान, यदि लाखों डॉलरों का शेष प्रश्न है महान। भाइयों बादल रिमझिम रिमझिम बरसते हैं, धरती तन्मय से पुलकित होती है, झरने चट्टानों से नाचते कूदते बहते हैं, वन वन में पेड़ हरे भरे होते हैं। मन विभोर होकर कोयल कुहू कुहू कूकते हैं, झूम झूम के मोर नाच दिखाते हैं, सारी सृष्टि गूंजती है हम सब एक है एक है, वही जन्नत का भला भला रास्ता है। भाइयों चलो कदम कदम मिलाकर हाथ हाथ बढ़ाकर एकता का राग गाते हुए आगे आगे चलो, भारत माता का यशोगान जग भर में सुनाते चलो। हम है भारतवासी, हम सब एक है एक है। मेरा दूसरा शीर्षक है नमन करता हूँ हम है फूल। हमारे नाम अनेक लेकिन हम है फूल, हमसना हमसाना वही है हमारा बल। खिल खिल पड़ते हैं हम हर पल पल, इस वतन के हैं हम प्यारे लाल। हमारे नाम है अनेक लेकिन हम है फूल, हमसना हमसाना वही है हमारा बल। खिल खिल पड़ते हैं हम हर पल पल, इस वतन के हैं हम प्यारे प्यारे लाल। पेड़ अनेक हैं लेकिन बगीचा एक, फूलों के रंग अनेक हैं लेकिन हमारा दिल है एक। फलों का स्वाद अनेक लेकिन जमीन एक, हम सब अलग अलग हैं लेकिन हम सब एक। हम सब एक वन के हैं फूल, रंग होते हैं नीले पीले सफ़ेद लाल, लेकिन हम सब रहते हैं हमेशा मिलजुल, एक साथ खुशबू बांटकर लुभाते जन जन का दिल। बगीचा ही हमारा प्यारा वतन, यहाँ आंख मिचौनी खेलते हैं हम हर दिन। भीनी भीनी सुगंध से बहाते लोगों का मन, सदा करते हैं इस प्यारे देश का नाम। बगीचा ही हमारा प्यारा वतन, यहाँ आंख मिचौनी खेलते हैं हम हर दिन। भीनी भीनी सुगंध से बहाते लोगों का मन, सदा करते हैं इस प्यारे देश का नाम। वतन के वीर सपूत है हम सब, वतन के गुलाम बनकर सेवा करते हम सब। वतन के वीर सपूत है हम सब, वतन के गुलाम बनकर सेवा करते हम सब। हर दिन मुस्कुराते देश का नाम बढ़ाते हम सब, प्राण की त्याग करके इस भूमि की गरिमा को बढ़ाते हम सब। आपस में नहीं लड़ते हैं हम, खून डकैती नहीं करते हैं हम, हड़ताल जलाना नहीं करते हैं हम, पुण्य भूमि की शोभा में चार चांद लगाते हैं हम। न्यारे न्यारे फूल है हम, एकता की गुलदस्ता है हम, भारत माता के यश के सिरे मोर है हम। इस देश की जय गान करना हमारा कर्तव्य है, इस देश की मान बढ़ाना हमारा धर्म है।
1: अभी तक आपने सुना श्री शेख हुमायूं बादशाह की कविताएं। इसी के साथ आज का ये हिंदी कार्यक्रम गजरा अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले कार्यक्रम में कुछ विशेष लेकर फिर हम आपके साथ जरूर उपस्थित होंगे। तो श्रोता, तब तक के लिए आपका दोस्त इस्माइल को दीजिए इजाजत।